अस्मिजनों पद्यर्थं ब्रह्ममदे अखण्डैकरसपदार्थम् ब्रह्ममदे ऐङ्गत्र सत्पदार्थं ब्रह्ममदे पगिवुत्र चित्पदार्थम् ब्रह्ममदे प्रियमेनु सुखपदार्थं ब्रह्ममदे अखण्डैकरसपदार्थम् ब्रह्ममदे जडमेनु पदतिनर्थं ब्रह्ममदे जीवनेनु पदतिनर्थम् ब्रह्ममदे ईशनेनु पदतिनर्थं ब्रह्ममदे अखण्डैकर

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।

0: ओम नमः शिवाय।
1: यू आर लिसनिंग टू शैवम.org रेडियो, द 24/7 स्पिरिचुअल चैनल फ्रॉम शैवम.org।
0: ओम नमः शिवाय।